और ना अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वही फरमाबरदार है।

क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सबको खुदा ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज लोग ऐसे हैं कि खुदा के बारे में झगड़ते हैं, ना इल्म रखते हैं और ना हिदायत और ना किताब रोशन।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। बैत मुकम्मल हो चुकी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तजवीज़ रखी कि 12 सरबराह मुंतखब कर लिए जाएं, जो अपनी अपनी कौम के लिए नकीब हों और इस बैत की दफात पर अमल दरामद के लिए अपनी कौम की तरफ से वही जिम्मेदार और मुकल्लफ हों। आपका इरशाद था कि आप लोग अपने अंदर से 12 नकीब पेश कीजिए ताकि वही लोग अपनी अपनी कौम के मामलात के जिम्मेदार हों। आपके इस इरशाद पर फौरन ही नकीबों का इंतखाब अमल में आ गया। 9 खजरज से मुंतखब किए गए और 3 औस से। नाम ये हैं: खजरज के नकबा असद बिन जुर्रारा, साद बिन अमरू, अब्दुल्ला बिन रवाहा, राफे बिन मालिक, बुर्रा बिन मारूर, अब्दुल्ला बिन अमरू, उबादा बिन सामत, साद बिन उबादा, मुंजर बिन अमरू। औस के नकबा उसैद बिन खुजैर, साद बिन खैसमा, रिफा बिन अब्दुल मंजर। जब इन नकबा का इंतखाब हो चुका तो इनसे सरदार और जिम्मेदार होने की हैसियत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अहद लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग अपनी कौम के जुमला मामलात के कफील हैं, जैसे हवारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब से कफील हुए थे, और मैं अपनी कौम यानी मुसलमानों का कफील हूँ। उन सब ने कहा, जी हाँ। मुआहिदा मुकम्मल हो चुका और अब लोग बिखरने ही वाले थे कि एक शैतान को इसका पता लग गया। चूंकि ये इंकशाफ बिल्कुल आखिरी लम्हात में हुआ था और इतना मौका ना था कि ये खबर चुपके से कुरैश तक पहुंचा दी जाए और वो अचानक इस इज्तमा के शुरका पर टूट पड़े और उन्हें घाटी ही में ले जाए, इसलिए शैतान ने झट एक ऊंची जगह खड़े होकर निहायत बुलंद आवाज से, जो शायद ही कभी सुनी गई हो या पुकार लगाई गई हो, खैमे वालो मोहम्मद को देखो, इस वक्त बददीन उसके साथ हैं और तुमसे लड़ने के लिए जमा है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उस घाटी का शैतान है, वो अल्लाह के दुश्मन, सुन, अब मैं तेरे लिए जल्द ही फारिग हो रहा हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि वो अपने डेरों पर चले जाएं। उस शैतान की आवाज़ सुनकर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस फरमाया है, आप चाहें तो हम कल अहले मना पर अपनी तलवारों के साथ टूट पड़ें। आपने फरमाया, हमें इसका हुक्म नहीं दिया गया है, बस आप लोग अपने डेरों में चले जाएं। इसके बाद लोग वापस जाकर सो गए, यहाँ तक के सुबह हो गई। ये खबर कुरैश के कानों तक पहुंची तो गमो अलम की शिद्दत से इनके अंदर कोहराम मच गया, क्योंकि इस जैसी बैत के जो नताइज उनकी जानो माल पर मुरतब हो सकते थे इसका उन्हें अच्छी तरह अंदाजा था। चुनाचे सुबह होते ही इनके रोसा और अकाबर मुजरिमीन की एक भारी भरकम वफ्द ने इस मुआहिदे के खिलाफ सख्त एहतजाज के लिए अहले यसरब के खेमों का रुख किया और यूं अर्ज परवाज हुआ, खजरज के लोगों, हमें मालूम हुआ है कि आप लोग हमारे उस साहब को हमारे दरमियान से निकाल ले जाने के लिए आए हो और हमसे जंग करने के लिए इसके हाथ पर बैत कर रहे हो, हालांकि कोई अरब कबीला ऐसा नहीं जिससे जंग करना हमारे लिए इतना ज्यादा नागवार हो जितना आप हजरात से है, लेकिन चूंकि मुशरिकीन खजराज से इस बैत के बारे में सिरे से कुछ जानते ही न थे, क्योंकि ये मुकम्मल राजदारी के साथ रात की तारीकी में जेर अमल आई थी, इसलिए इन मुशरिकीन ने अल्लाह की कसम खा खा कर यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हम इस तरह की कोई बात सिरे से जानते ही नहीं। बिलाखिर ये वफ्द अब्दुल्ला बिन उबई के पास पहुंचा, वो भी कहने लगा, ये बातिल है, ऐसा नहीं हुआ है और ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरी कौम मुझे छोड़कर इस तरह का काम कर डाले, अगर मैं यसरब में होता तो भी मुझसे मशवरा किए बगैर मेरी कौम ऐसा ना करती। बाकी रहे मुसलमान तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और चुप साध ली, उनमें से किसी ने हाँ या नहीं के साथ जुबान ही नहीं खोली। आखिर रुअसाए कुरैश का रुझान ये रहा कि मुशरिकीन की बात सच है, इसलिए वो ना मुराद वापस चले गए। रुअसा मक्का तकरीबन इस यकीन के साथ पलटे थे कि ये खबर गलत है, लेकिन इसकी कुरैद में वो बराबर लगे रहे। बिलाखिर इन्हें यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि खबर सही है और बैत हो चुकी है, लेकिन ये पता उस वक्त चला जब حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو دیکھ لیا اور انہیں جا کھدیڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا، پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں متم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ میں گزرے تھے۔ ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے، مگر اتنے میں ہی وہ دکھائی پڑ گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ یہی عقبا کی دوسری بیت ہے جسے بیت عقبا کبرا کہا جاتا ہے۔ یہ بیت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت و وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اعتماد اور جاں سپاری و شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے، ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا، اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا، یعنی وہ ایمان جو ظلم و ادب ان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سر نگون نہیں ہوتا، وہ ایمان کہ جب اس کی باد بہار چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی، حاضر خالی ہیں اور غالباً مستقبل بھی خالی ہی رہے گا۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث اپنے سلسلے کو ہم یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا، FM 92.6۔

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे HOD केमिस्ट्री और साथ लेक्चरर जो हैं मैम अनम से। अब मैं दोबारा मैडम सुमेरा की तरफ बढ़ूंगा, उनसे जानना चाहूंगा। मैडम, जदीद दौर में बहुत मैटर करता है कि MOU और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, क्या इसके बारे में आप इजहार राय करना चाहेंगी?
2: थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन सर। एक्चुअली सेंसिटिव भी है और बढ़िया, जो स्टूडेंट्स आजकल के दौर के समझ फहम रखते हैं वो जब एडमिशन लेते हैं तो वो ये चीज़ बड़ी गौर व फिक्र के बाद कि इस डिपार्टमेंट या इस यूनिवर्सिटी में हमसे पहले स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट और फैकल्टी क्या कर रही है। तो उसमें मैं बताती चलूँ, हमारे पास जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम लोग रेगुलरली विद इन द यूनिवर्सिटी एंड आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, हमारे सारे फैकल्टी मेम्बर्स दे आर अटेंडिंग द वेबिनार्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज दैट आर नेशनल एंड इंटरनेशनल इनसाइड द पाकिस्तान एज वेल एज अब्रॉड। अब्रॉड विजिट पे भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज पे, फंडेड कॉन्फ्रेंसेज पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी और अपने स्टूडेंट्स का काम प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेम्बर्स, कुछ फैकल्टी मेम्बर हमारे UCP के डिपार्टमेंट के एज अ फैकल्टी विजिटिंग फैकल्टी मेम्बर सर्व कर रहे हैं इंटरनेशनली। अलॉन्ग विद दैट हमारे डिफरेंट MOUs हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ अलबाना USA में, यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा UAE में है। देन हमारी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल विजिट्स जिसमें इंडस्ट्रियल कोलेबोरेशन में बिन रशीद के साथ है, जिन्ना हॉस्पिटल्स के साथ हैं, नोवावेट फार्मास्यूटिकल्स हैं, दिलावर हुसैन फाउंडेशन है, एंड अलॉन्ग विद दैट पाक एंग्रो इंजीनियरिंग, शफी रेजो एंड TTI लैब्स हैं। और इन MOUs का हमें 3-4 तरह पे बहुत फ़ायदा है। एक तो हमारे स्टूडेंट्स जब उन्हें BS डिग्री में 6-7 सेमेस्टर में इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं तो समटाइम फ्री ऑफ कॉस्ट 2-3 मंथ्स, एंड समटाइम उन स्टूडेंट की कैपेसिटी को देखते हुए दे पे बी टू आर स्टूडेंट। अलॉन्ग विद दैट आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ देयर डिग्रीज उनको वही इंडस्ट्रीज उनके पिछले अपने पास एक्सपीरियंस के बेस पे जॉब्स ऑफर करती हैं। और न सिर्फ ये बल्कि हमारे MS PhD प्रोग्राम्स के लिए रिसर्च फैसिलिटीज़ जो हमारे पास ना हो इन इंडस्ट्रीज़ में हैं, हम अब इन्हीं कोलेब्रेशन के बेसिस पर हम वहाँ से अपनी रिसर्च फैसिलिटीज़ भी समटाइम अपनी पूरी कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में फैकल्टी इंडस्ट्री प्लेसमेंट, हर साल 1-2 फैकल्टी मेम्बर्स फॉर अ वीक आर टू यूनिवर्सिटी हमें ड्यूटी लीव देती है और जाके इंडस्ट्री में कोई ना कोई उनका प्रॉब्लम ओरिएंटेड इशू जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समटाइम इंडस्ट्रियल विजिट्स और जो कि ड्यूरिंग द सेमेस्टर विद द स्टूडेंट्स एज वेल एज विद द फैकल्टी मेम्बर्स दे आर गोइंग टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू सी देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वट कैन दे ऑफर अस फॉर आर रिसर्च स्टूडेंट्स आर BS स्टूडेंट्स।
1: जी हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया, बहुत मशकूर हैं, इतनी वजाहत से आपने बयान किया अपने डिपार्टमेंट के बारे में। अब मिस अनम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जो लैब्स हैं उनके बारे में हमारे सुनने वालों को कुछ बताइए।
3: सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग अ गुड इनसाइट टू द डिपार्टमेंट। सर, द लैब्स दैट वी हैव बेसिकली एज डॉक्टर सुमेरा ज़ैफ हैज़ ऑलरेडी मेंशन्ड, वी आर कैटरिंग बोथ द बायोकेमिस्ट्री एंड द केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स। सो वी हैव टॉप नॉच, up to date, the most facilitated labs over here in the department in the University of Central Punjab, both regarding the chemistry and the biochemistry sections over here. So basically the instrumentation that we have include all of the basic equipment that is required for the students to perform their lab activities in the chemistry department. Other than that, when we talk about most advanced instruments or the elevated instruments, we have multiple instrumentations. For example, for the characterization, we have an instrument HPLC available over here. Other than that, we have multiple spectrophotometers. We have multiple apparatuses that is used for the reduction of a different type of extraction of different chemicals. Other than that, if we are not doing anything over here, that is, the students are not able to cater over here, we have multiple collaborations with our international universities, with the national universities in Pakistan as well. Our faculty members are working hand in hand with the faculty, both at the national level and the international level. So the students, their needs in the terms of research, in the terms of when they're doing their thesis, when they're doing their lab experimentation, their needs are catered very carefully, either inside the premises of the department and outside of the department as well. And all of the students who have done their research do their research in the time frame that has been given to them. So as far as the lab of the department is concerned, we are providing the top-notch facilities to the BS graduates and the MS PhDs as well.
1: Ma'am, aap kuch mazid kehna chahengi is pe?
2: Sir, bas yahi iski example dungi ki success alhamdulillah aur ye jo hamare 16 PhDs hain, agar hamare paas facilities nahi hoti to hum inko in time, inme se kuch to aise hain jo ki covid ki wajah se 6 to 7 years pe gaye hain, lekin unme se mostly wo hain jinhone their fourth or fifth year mein PhD complete kar di alhamdulillah. Aur ye sab kuch isi liye hai ki hamare paas FOST and UCP mein फैसिलिटीज सारी हैं, और अगर कोई नहीं होती तो हम इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, बट हम अपनी जो हमारी कोलैबोरेशंस और इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, हम उसको बेस बनाकर उनसे इन कोलैबोरेशन उनसे वो करैक्टराइजेशन आर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करा के अपने स्टूडेंट्स को टाइमली कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्रीज की तरफ ले जाते हैं.
1: वेरी वैलिड पॉइंट मैम. इसी के साथ हम एक और ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: वेलकम बैक टू FM 92.6 UCB की दुनिया और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद नौ। नवीरा, हम इस वक्त लास्ट लिंक में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे मैं पूछने वाला हूँ। आपसे मैंने कोई नज़म भी सुननी है इसी लिंक में, तो हमारे सामीन को सबसे पहले तो बताइएगा कि मैं ये सोच रहा था ब्रेक में भी कि हम अगर ज़िद से या हम अपने मेच्योरिटी लाइफ स्टाइल में किसी अलग जॉनरा को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स नहीं चाह रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आप MBBS में जाओ, आप इंजीनियर बनो, लेकिन वो थ्री इडियट्स वाली मूवी के अकॉर्डिंग, और बच्चा चाहता है कि मुझे वीडियोग्राफर बनना है, बच्चा चाहता है मुझे फोटोग्राफर बनना है, मुझे एनिमल्स को क्लिक करना है, वो थ्री इडियट्स वाला। सो कितना ज़रूरी है कि आप अपने योनरा को अगर सिलेक्ट कर लो और उसमें हार्ड वर्क करो, ये कितना ज़रूरी है?
2: अली, इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो स्कोप है ना, वो बंदे का होता है, फील्ड का नहीं होता। आपको हर फील्ड में बहुत से नाकाम और बहुत से कामयाब लोग मिल जाएंगे। हमने एतजाज सेशन की बात की, बहुत से वकलाएँ हैं जिनका नहीं उस तरह काम चलता। इसी तरह अगर आप सिंगिंग में चले जाएं तो बड़े बड़े नाम भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो पूरी पूरी ज़िंदगी एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा। तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपका कोई गोल है और आप उस तक पहुँच नहीं पा रहे, तो अपना गोल ना बदलें, अपने एक्शन बदलें जिसकी वजह से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। और ये बात तो अटल है कि गोल विदाउट हार्डवर्क एंड प्लानिंग इज़ जस्ट अ विश। तो दुनिया किसी के विश पे नहीं चलती। आपने जो भी गोल सेट किया, जो भी आपका टारगेट है, आप उसके लिए होमवर्क करें, आप उसमें मेहनत करें। मैं हमेशा एक जो बात कहती होती हूँ ये कि आप जिस भी काम में है ना, आप उसमें पक्के हो जाएं। अगर आप स्वीपर हैं तो आप सबसे अच्छे स्वीपर हों। अगर आप एक शो होस्ट करते हैं, आप सबसे अच्छा शो होस्ट करें। हम लोग जब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ देते हैं, हर वो चीज़ जो आपको मिली है ना, वो उसकी अता है अल्लाह ताला की कि वो आपको मिली है, तो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ दें और हर दिन जो है मेहनत करें। हर दिन आपकी कोशिश, आपकी एफर्ट आपको किसी ना किसी मुकाम तक ज़रूर पहुँचाएगी। मैं अगर आज मुझसे नए बच्चे पूछते हैं ना कि अच्छा तलफ़ुज़ कैसे बेहतर करना है, मवाद कैसे लिखना, कैसे कॉन्टेंट कैसे, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप पहले उस मेहनत के ट्रैक पे पढ़ें जिस पे मैंने, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने पहली तकरीर 2008 में की और आखिरी अगर 2021 में की, 22 में, तो इट्स मोर देन अ डेकेड। एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे साल एक चीज़ को दिए हों, तो उसके लिए वो शायद चीज़ों को, अल्फाज को ग्रिप करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो आपकी जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड है, आप उसमें मेहनत करें, क्योंकि वो एक शेर था कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, है अमल लाजमी तकमील आरजू के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो इससे कुछ नहीं होना कि आप रंगीन ख्यालात देखते रहें, ये वो। आपको जो भी एक स्किल है ना, जैसे मैं जब बचपन में थी, 3-4 साल की थी, तो मेरी ये वाली चीज़ तो डिक्लेयर हो गई थी कि इसमें जो टैलेंट है वो बोलने का है और इसकी ऑडिटरी सेंस अच्छी है, क्योंकि उस वक्त एक निजी टीवी चैनल आया था और तब रोज़े सर्दियों में आते थे, तो मैं सुबह सुबह उठ के बोलती थी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं और मैं हूँ नवीरा बाबर। तो वो एक बचपन से एक चीज़ थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उसी तरफ लगाया जिसमें मेरा शौक था, और उन इतने सालों के एफर्ट्स का फ़ायदा ये हुआ कि मेरी स्कूलिंग से मेरी यूनिवर्सिटी की तालीम तक सारी स्कॉलरशिप पे थी। हालांकि ऐसा नहीं होता आमतौर पर, मैंने लाहौर के टॉप क्लास स्कूल में पढ़ा और उस स्कूल ने मुझे खुद अप्रोच किया था ऑन द टैलेंट बेस। मैंने कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, UCP ने जो 2021 की हाईएस्ट स्कॉलरशिप दी थी टैलेंट बेस पे, वो थी 1.2 मिलियन, और वो मुझे मिली थी। तो आप अपने टैलेंट में बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत से बच्चे जिनके नंबर मुझसे ज़्यादा होंगे, हो सकता है उनको ये चीज़ें या अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हों। तो इसलिए आपको जो भी एक चीज़ आती है, आप उसमें टिक जाएँ और उसी के हिसाब से आप अपनी तालीम भी मुकम्मल कर लें, तो मुझे लगता है आपके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल नवीरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं ये समझता हूँ कि इस सफ़र में अगर आपके पास दो ताकतें हैं, आपके पास दो ऐसी आपके पर्सनालिटी में एलिमेंट्स हैं, एक का नाम सब्र और दूसरे का नाम यकीन, अगर ये दो ताकत आपके पास हैं, यकीन माने मैंने ये चीज़ टेस्ट की है इस फील्ड में। आपका तो बचपन से ही आर्ट से ताल्लुक था, मेरा बचपन से आर्ट से ताल्लुक नहीं था, मैं APS से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट हूँ, स्टेज से ताल्लुक रहा बचपन से, یہ پلیس وغیرہ کلاس یونیورسٹی اور اسکولس وغیرہ کے کر لینے, یونیورسٹی میں بھی کر لینے, لیکن اسپیسیفکلی میرا کوئی آرٹ سے تعلق نہیں تھا. میں نے اپنی محنت سے بیٹ کیا اپنے سے بڑے ایکسپیرینسڈ لوگوں کو جو شاید بڑے عرصے سے اس فیلڈ میں لگے ہوئے تھے. تو محنت بڑی ضروری ہے اور صبر بڑا ضروری ہے. آپ کہیں کہ آج آپ فیلڈ میں آئیں اور کل آپ فیلڈ کے ایک لیجنڈ سٹار بن جائیں, تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. دوسری جو چیز ہے نا, یقین. یقین بہت بڑی طاقت ہے. توکل تو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے, اور ہمیں اگر اللہ کی ذات پہ توکل ہے کہ جو ہم ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں, جو ہم اپنی محنت پٹ کر رہے ہیں اپنے کام میں, اس کا صلہ ایک نہ ایک دن ہمیں ملے گا. اور یقین مانے وہ ملتا ہے, اپریسیشن کی صورت میں ملتا ہے, وہ ہمارے نام بننے کی صورت میں ملتا ہے, وہ ہمیں ریزلٹس اور آؤٹ پٹ کی صورت میں ملتا ہے. نویرا, لاسٹ میں آپ سے نظم سنوں گا, لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ضروری میسج ہمارے سامعین کو دینا چاہیں.
2: جی علی, جیسے آپ نے صبر اور توکل کی بات کی تو اچھا ہوا میں یہ پوائنٹ شاید مس کر جاتی. اگر میں اپنی جرنی کو ایک لائن میں ڈیفائن کروں, وین ایور آئی لک بیک اور میں دیکھتی ہوں اتنی اچیومنٹس, اتنی ساری چیزیں, تو مائی جرنی واز اے جرنی آف فیتھ. ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے مطلب بہت سے تھک اینڈ تھنس دیکھے. مطلب آپ کو بھی پتہ ہے جب آپ پروفیشنلی بھی فیلڈ میں آتے ہیں, آپ کام کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیلنجز ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے میں آپ سے بات کری تھی بریک میں کہ یو سی پی میں بھی 4 سال میں نے بہت محنت کی اپنے سی جی پی اے کو مینٹین کرنے میں, کو کریکولرز میں, باقی چیزوں میں. اس میں مجھے یاد ہے بہت سے ایسے دن تھے جب میں ایموشنلی بھی بہت لو تھی. ہو جاتا ہے, آپ زندگی کے ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہیں, آپ ایموشنلی بھی لو فیل کرتے ہیں, اور کچھ ایسے دن بھی ہوتے ہیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا بس ختم ہوگی. مجھے لگتا ہے ایک ناشکری کی قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں, آپ کہیں کہ اچھا نہیں. وہ وقت جب آپ بالکل تھک جاتے ہیں, اس وقت جب آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اٹھ جاتے ہیں نا, وہ ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی اچیومنٹس میں نے میرے پاس ہیں, اس میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے, کیونکہ سمبڑی لائک می ہو از سوشلی آکورڈ, جو بہت زیادہ سوشل نہیں ہے, اس کے لیے اتنا زیادہ اچیو کر لینا اور لوگوں کا اس کو اتنا زیادہ جان لینا, وہ آسان چیز نہیں ہوتی. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے علی, کتنے کتنے چیزیں تھیں جو میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ہمت ختم ہو گیا, آپ میری ڈھارس بنا دیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اس میں سے کیسے نکلوں گی, مجھے مشکل لگ رہا ہے. اور آپ یقین کریں اس نے میری ڈھارس بھی بندھائی, میری عزت بھی رکھی, اور وہ ساری چیزیں جو آج میں دیکھتی ہوں, میں سوچتی ہوں یہ ہیومنلی پاسبل نہیں تھا اچیو کرنا. اور مجھے یاد ہے کچھ دن ہوتے ہیں جو آپ کے لیے قبولیت کے ہوتے ہیں, جب میں اپنی ٹرانسکرپٹ لینے آئی تھی اور جب میں نے اس کو دیکھا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کے بہت سارا کچھ کرنے کے باوجود, بہت سے لوگوں کے بہت کچھ کہنے کے باوجود آپ وہ بن نہیں جاتے. اور میرے ابو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھو جس طرح ہوتا ہے نا, آپ جب ریس میں بھاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ہیلمٹ پہنایا جاتا ہے تاکہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں, آپ ڈائیورٹ نہ ہوں. تو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تم نے اپنی اٹینشنز ڈائیورٹ نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت اللہ پہ قرض ہوتی ہے اور اللہ وہ قرض نہیں رکھتا, تو تم نے اپنی ڈائریکشن میں بالکل سیدھا چلنا ہے. اور بہت سے لوگوں کی بہت ساری باتیں سننے کے باوجود آئی میٹ ایوری ون ود سیم بگ ہارٹ اینڈ ود سیم بگ اسمائل, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوتا ہے نا, تو کوئی نہیں ہے جو اس کو ٹال سکے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے مائی جرنی واز ان شارٹ دی جرنی آف فیتھ.
1: امیزنگ. فیتھ, یقین اللہ کی ذات پہ بے حد ضروری ہے, اور یہ کوئی مکس باتیں نہیں ہیں یا بہت بڑا کوئی فلسفہ نہیں ہے, چھوٹی سی بات ہے. اپنے اپنے ٹریک پہ رہنا ہے, اپنے ہی ٹریک پہ محنت کرنی ہے, ڈائیورٹ نہیں ہونا. جب آپ اپنی محنت ڈال لیں اپنے کام میں, اپنی ایفرٹ کمپلیٹلی پٹ کر لیں, تو دین آپ نے اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا ہے, توکل کو پکڑ لینا ہے, اپنی ذات سے باندھ لینا ہے, اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی.
2: وہ ایک میاں محمد بخش صاحب کا شعر تھا کہ مالی دا کم پانی دینا, پر پر مشکاں پاوے, تے مالک دا کم پھل پھول لانا, لاوے یا نہ لاوے.
1: بے شک بے شک. دیکھیں اللہ کی ذات کے فیصلے ہوئے ہوئے ہیں, وہ تحریر ہمارے بارے میں لکھ دی گئی ہے کہ آج علی ریڈیو ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا میں بیٹھا ہے, 10 سال بعد علی کہاں ہوگا, یہ اللہ کی ذات نے فیصلہ لکھ دیا ہے. اور اس کے فیصلے پر توکل, اس کے فیصلے پر یقین رکھنا, یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے. نویرا, پروگرام ہمارے اختتامی مراحل میں ہے, گزارش کروں گا آپ سے کوئی اچھی سی نظم یا کوئی اچھی سی غزل آپ ہمیں سنا دیں.
2: چونکہ پروگرام میں بہت سیریس نویت کی باتیں ہوئی ہیں, تو اب میں ایک ذرا لائٹ موڈ پہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے تو محبت کرو, اس پہ میں اس کو کنکلیوڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ محبت کے کیا رنگ ہیں اور کیوں وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, तुम मोहब्बत करो, शाहराहों पे हाथों में गजरे लिए, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, हमने सोचा न था, गुनगुनाते हुए गाड़ियों की तरफ दौड़ते गुलफरोशों की खातिर मोहब्बत करो, तुम मोहब्बत करो, चाय खानों के दरवाज़ों पर मुंतज़िर, बे इरादा तबस्सुम में ख्वाबों के नोहे छुपाती हुई, सांवली लड़कियों के लिए जो ये दरियाफ्त करती हैं कि आप दो लोग हैं, आइए उस तरफ शोर से हटके एक मेज़ है, तुम मोहब्बत करो, अपनी गाड़ी के शीशों से अकबी नशिस्तों को जासूस नज़रों से तकते हुए ड्राइवरों की ख्याली कहानी को तकमील देने की खातिर मोहब्बत करो, सिग्नलों पर दुआओं की गडरी पे रंगीन लफ्ज़ों के टुकड़े सजाती हुई, तेरी जोड़ी सलामत रहे मनमनाती हुई, औरतों के लिए तुम मोहब्बत करो, अपने अपने इलाके की बस ढूंढ कर हिजर में मुख्तसर अल्तवा की गरज से उसे छोड़ने के लिए, सिनेमा घर में फिल्मों के नाकाम शो देखने के लिए तुम मोहब्बत करो, सर्द मौसम में कॉफ़ी की प्याली से बोसे चुराने की धुन में मोहब्बत करो, मिलके फूके हुए एक सिगरेट के रंगीन फिल्टर को, परफ्यूम की खाली बोतल को महफूज रखने की खातिर मोहब्बत करो, तुम मोहब्बत करो ताकि दरबार के गिर्द बैठे नजूमी तुम्हारी हथेली पे अपना नसीब आजमाने लगे, और भले इस मोहब्बत से बाहर निकलने में तुमको जमाने लगे, तुम मोहब्बत करो,
1: तुम मोहब्बत करो। बहुत खूबसूरत नवेरा, और यकीन माने बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और जिस अंदाज़े बयां से आपने हमारे सामीन को सुनाया वही एक बहुत खूबसूरत अंदाज़े बयां है। दुआ करता हूँ, दुआ गो हूँ कि जो हमारे सामीन हैं और हमारे मुआशरे में जो लोग हैं, अल्लाह पाक सबको ऐसी बेटियाँ नसीब करे जिनको अपनी फील्ड से ऐसी मोहब्बत हो, अपने काम से ऐसी मोहब्बत हो, और इस तवक्कल से वो फील्ड में आएँ कि वो कामयाबी को सोचें और समझें कि बस मेरे दो कदम पे ही है, और मैं उनको अपनी मेहनत पे यकीन हो कि मैंने अपनी मेहनत से इस चीज़ को अचीव कर लेना है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तितामी मराहिल की तरफ लेके चलते हैं। मेरा एक ही पैगाम है अपने तमाम सामीन के लिए, जो कि मैं तकरीबन अपने हर प्रोग्राम के इख्तिताम पे देता हूँ, कि अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, अपनी ज़ात पे मेहनत करें, उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए एफर्ट्स पुट करें, उनको खुशी दें। बचपन में जैसे उन्होंने आपको पाला है, आपकी माँ ने, आपके बाप ने, जैसे आप सोए होते थे रात को और आप उठते थे रो के और वो भी आपके साथ उठते थे, आज वक्त है उन दिनों को वापस करने का, आपकी मेहनत से, आपकी कामयाबी से, और आपकी अपनी फील्ड से, लगन से ये चीज़ वापस हो सकती है। आप कामयाब होंगे तो सबसे पहले अगर कोई आप पे फख्र करेगा तो आपके माँ बाप होंगे। जब आप अपनी ज़ात के लिए मेहनत पुट करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत पुट करते हैं, तो मुआशरे के लिए रिस्पेक्टिवली मेहनत आ ही जाती है नज़र, आपका मुल्क कामयाब होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हसन को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।

हार्ड कोर एजुकेशन लेके चल पड़ेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है बच्चा उतना इंटरेस्ट शो ना करवाए. सो बहुत जरूरी होता है कि एक्टिविटीज भी साथ में चलें. और इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का. हम गुफ्तगू करेंगे जनाब तौकीर नाज़िक साहब से इफ्तार प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं.

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और आपका प्रोग्राम जुगनू। हम बात कर रहे हैं आज तौकीर नाजिक साहब से, जो कि प्रेसिडेंट हैं इब्तिदा प्रोजेक्ट के, इब्तिदा सोसाइटी के इनफैक्ट, और यूसीबी का इब्तिदा प्रोजेक्ट जो है उसको वो ये लीड कर रहे हैं। तो तौकीर, हम बात कर रहे थे कम्युनिटी इंगेजमेंट की और कि हम कैसे इनको, बच्चों को इंगेज कर रहे हैं। इनिशियली जो कम्युनिटी टारगेट की गई है, ये कहाँ की कम्युनिटी है?
2: ये सर, हमने क्योंकि यूसीपी से स्टार्ट किया है, हम यूसीपी के स्टूडेंट हैं, तो हम चाहते हैं कि हम घर से स्टार्ट करें, हमारे आसपास जो हमसाए हैं वो इससे मुस्तफीद हों। इसलिए हमने जो यूसीपी के आसपास कच्ची आबादी है, इस्लामी एरियाज हैं, वहाँ हमने ये स्कूल बनाया एक इब्तिदा स्कूल के नाम से।
1: ग्रेट जी, वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो बड़ी अच्छी अप्रोच है जी कि हम पास के एरियाज को पहले टारगेट कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह फर्दर इसको आई थिंक आप एक्सपेंड करना चाहेंगे। अच्छा, ये जो बच्चे इंगेज हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो बेनिफिशरीज हैं इस प्रोजेक्ट के, क्या ये चाइल्ड लेबर में भी इन्वॉल्व हो रहे थे किसी हद तक? घर वालों के लिए कुछ अर्निंग का भी जरिया बन रहे थे?
2: जी बिल्कुल सर, क्योंकि जो कच्ची आबादी है, झोंपड़ियाँ भी हैं उसमें, तो काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो ज़यीफ़ हैं, जो काम नहीं कर पाते, उनका जो बेसिक आमदनी का ज़रिया है वो उनका बच्चा है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, वो उनके लिए घर का सरबरा है। तो आसपास वो कम्युनिटी में रह के ट्रीट चिल्ड्रन के तौर पे वो काम भी करते हैं, चाइल्ड लेबर भी करते हैं। आसपास हम उधर इधर देखते भी रहते हैं, यूसीपी के आसपास वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, वो चीज़ें दूसरों को सेल कर रहे होते हैं ताकि वो शाम को कुछ ना कुछ अपने घर लेके जाएं।
1: अच्छा, एक जो चीज़ देखने को मिलती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो ये होता है कि बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स उनको ज़्यादा अर्सा एजुकेशन में एंगेज होने नहीं देते। तो क्या ये जो एजुकेशन प्रोजेक्ट हमारा है इब्तिदा, ये उनकी उस अर्निंग सोर्स में कोई खलल तो नहीं पैदा करता?
2: असल में सर, हमने जो कैंपेन की थी, उनके घरों में जाके उनके पेरेंट्स से मिले थे, तो हमने सारी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उनके साथ डिस्कस की थी कि आपके बच्चे का क्या टाइम टेबल है, आपके बच्चे की आमदनी का ज़रिया बन रहे हैं या आप खुद दिहाड़ी लगाते हैं अपने घर को चलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। तो हमने सारा पूछा था, उसके मुताबिक वो कहते थे कि सेकेंड टाइम हमारा बच्चा जाता है, जो बच्चियां हमारे पास पढ़ती हैं वो इधर सोसाइटी में घरों में जाके काम करती हैं, और जो बच्चे हैं वो सेकंड टाइम जाके कोई चीज़ जैसे अंडे हो गए या टिश्यू हो गए वो लेके वो सोसाइटी में बेचते थे। तो हमने फिर उनके मुताबिक ही अपने स्कूल का टाइम रखा है सुबह का 9 से 12, ताकि 9 से 12 वो हमारे स्कूल पढ़ें, फिर वो जाके अपनी दिहाड़ी भी लगाएं, ताकि वो जो उनके वोकेशनल चीज़ें हैं, दिहाड़ी है, उनका घर भी डिस्टर्ब ना हो, उनकी एजुकेशन भी, हम उनको फिर बैलेंस रख के चल रहे हैं अभी तक।
1: दैट्स ग्रेट जी। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं पाकिस्तान में इस हवाले से, लेकिन सक्सेस रेशो काफ़ी कम नज़र आती है, और उसकी मेन वजह यही है कि क्योंकि बच्चा अर्निंग सोर्स भी होता है घर का, तो पेरेंट्स ज़्यादा अर्सा उसको एजुकेशन में इंगेज नहीं होने देते, कोशिश करते हैं वापस उसे खींच लें और अर्निंग की तरफ लेकर आए। ऐसी एक प्रोजेक्ट था एक इंटरनेशनल एनजीओ का, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, और उसमें उन्होंने यही कोशिश की कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको वो स्कूल में वापस ले आए। इंसेंटिवाइज भी किया कि जो लोग उनको स्कूल में दाखिल करवाएंगे बच्चों को, उनको इतना इंसेंटिव इन कैश मिलेगा और उनको सर्टिफिकेशन मिलेगी वगैरह वगैरह। उसके एंड पे ये हुआ जो मैंने नोटिस की एक अजीब चीज़ कि 2 साल वो प्रोजेक्ट चला और 2 साल बाद रेशो जो थी हमारी एजुकेशन की, लिटरेसी की, वो और नीचे आ गई, बजाय इसके कि वो ऊपर जाती, वो 2% रिड्यूस हुई। तो उसमें यही हुआ कि चेक्स एंड बैलेंस प्रॉपर नहीं थे, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था कि बच्चों को पढ़ाएं, और वो चाहते थे कि बच्चों को अर्निंग की तरफ ही लेकर आएँ, और उनका ये मानना था कि एजुकेशन कुछ खास जो ना बेनिफिट नहीं देगी हमें। तो ये बड़े टफ प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको कैरी ऑन करना, तो बड़ी हिम्मत है आपकी कि माशाल्लाह आप प्रॉपर रिसर्च करके लोगों को कन्विंस करके इन बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो आप इनको किस तरह से इंगेज करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ इनके साथ करवाते हैं बच्चों के साथ?
2: इनके सर जो हॉबीज़ हैं, जो इनका इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एलीट क्लास तो है नहीं जो अफोर्ड करे एजुकेशन भी, सारे लग्जोरियस चीज़ें, ये इनकी जो बेसिक नीड्स हैं इनको ये मिल जाएँ, ये इनके लिए एक नेमत से काम नहीं है। तो हम इनको इस तरह से इंगेज करते हैं, इनको जो जो चीज़ें, जैसे हमने VIS UCP के साथ मिलके विंटर ड्राइव भी की है सर्दियों में, ताकि हम इनको सर्दियों के कपड़े दे सकें। इस तरह हम हर वीक में एक डे हमने ऐसा रखा हुआ है जिसमें हम इनको पढ़ाते नहीं हैं, इनको यही चीज़ें सिखाते हैं, इनका जो टैलेंट है वो हम इधर एक्सप्लोर करते हैं, अपने इब्तदा स्कूल में, जैसे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो गई, कोई आर्ट एक्टिविटीज़ हो गई, ताकि ये एजुकेशन के साथ साथ हमारे साथ दोस्तों की तरह मिल के रहें। बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चे हैं तो इब्तदा है, तो जब तक बच्चा रहेगा उसको हम किस तरह से मार्केटिंग करके एंगेज करते हैं, हम उनको खाना भी खिलाते हैं, उनके मेडिकल इश्यूज़, उनके लीगल इश्यूज़, हमने सारी SOPs इस हिसाब से बनाई हुई है बच्चे के कैलिबर को देख के, बच्चे की सहूलत को देख के।
1: दैट्स ग्रेट जी, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो मेन फोकस आपका है वो स्टूडेंट है, जो बेनिफिशरी है वो उसके ऊपर फोकस है आपका, और डेफिनेटली किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीज़। अच्छा, आप इब्तिदा का मुस्तकबिल किस तरफ देखते हैं, कहाँ किस लेवल पर देखते हैं इब्तिदा को, स्कोप क्या नज़र आता है आपको इसका, क्या आप इसका स्कोप बढ़ाना चाहेंगे?
2: इंशाल्लाह सर, मेरी तो ख्वाहिश है कि जो इब्तिदा प्रोजेक्ट है, पहले तो हम चाहते हैं जो UCP जौहर टाउन में, हम जौहर टाउन को टारगेट करें, उसके बाद हम इसको साउथ पंजाब, पंजाब में जहाँ जहाँ कच्ची आबादी है, एजुकेशन नहीं है, वहाँ हम ले कर चलें UCP के साथ और कोलेबोरेशंस के साथ।
1: ग्रेट, तो फिर आपसे मज़ीद इस सिलसिले में बात करेंगे, अभी इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, स्कोप को और फ्यूचर एस्पेक्ट्स को, लेकिन इस वक्त टाइम हुआ एक शॉर्ट म्यूजिक ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीबी की दुनिया और आपका अपना प्रोग्राम जुगनू। आज हम बात कर रहे हैं जनाब तौकीर नाजिक साहब से, जो कि प्रेसिडेंट हैं इब्तिदा सोसाइटी के और इब्तिदा प्रोजेक्ट यूसीबी का जो है उसको लीड कर रहे हैं। तौकीर, ब्रेक से पहले बात हो रही थी स्कोप के हवाले से कि इसको हम कैसे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उस पर ज़रा मज़ीद रोशनी डालिए।
2: सर, जो इब्तिदा का मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन के लिए, तो उसमें हम पहले तो अपने आस पास जो हमारे हमसाए हैं, जैसे जोहर टाउन में हमने जोहर टाउन को टारगेट किया है कि हम पहले इधर जितनी भी स्लम कम्युनिटी है, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है, उसको हम टारगेट करें, उनके लिए हम एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। हमारी यूसीपी की अल्हम्दुलिल्लाह एक बस भी है, मोबाइल यूनिट हमने बनाने हैं। हमारा पहला मकसद जोहर टाउन है, फिर हम लाहौर साउथ पंजाब ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उधर फ्लड रेशो ज़्यादा है, गुरबत ज़्यादा है, उधर रिसोर्सेज नहीं पहुंच सकते, बच्चा ज़्यादा साउथ पंजाब में जो तालीम नहीं ले पाता उधर उसकी रेशो ज़्यादा है, उधर भट्ठों में काम करते हैं, काफ़ी हो रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम अपने आइन को देखें, आइन तो कहता है एजुकेशन सबको दो, सबका बेसिक राइट है,
1: लेकिन फ्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन टोटली फ्री है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें।
2: बिल्कुल फ्री एजुकेशन, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। हम यूसीपी अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारा सपोर्ट कर रही है, एजुकेशनल रिसोर्सेज दे रही है। इसके साथ हम चाहते हैं कि हम यूसीपी में भी बोझ ना बने, उसके साथ हम कोलेबोरेशन भी करते हैं डिफरेंट फाउंडेशन के साथ, एनजीओज के साथ, सोसाइटीज के साथ, क्लब्स के साथ, ताकि हम इसको ज़्यादा फैला सकें इब्तिदा को।
1: दैट्स ग्रेट जी। ज़ाहिर है इतना बड़ा काम है, ये कोई भी इदारा अकेला शायद ना कर पाए, सो लोगों की कोलेबोरेशन बड़ी मैटर करती हैं और इससे ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन भी मिलती है। लाइक आज हमने स्टार्ट किया है, कल को कोई और भी हमें देख के स्टार्ट करेगा, तो ये बेहतरी मुल्क के लिए ही सामने नजर आएगी और ज़्यादा लोग इसमें, ज़्यादा बच्चे एंगेज होंगे एजुकेशन में। अच्छा, बात हो रही थी मोबाइल यूनिट की, तो मोबाइल यूनिट का मकसद क्या है बेसिकली? क्या वो मुख्तलिफ जगह पर मूव किया करेगा डेली बेसिस पर, या किस तरह से उसको आप यूज़ करेंगे?
2: असल में सर, इधर जो हमने स्कूल बनाया हुआ है यूसीपी के पास, इधर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जगह भी है, बिल्डिंग भी है, तो बच्चा आके इजीली बैठ सकता है। तो मोबाइल यूनिट बनाने का जो बेसिक मकसद है कि जहां हमारे पास बैठने की जगह नहीं है या हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है स्कूल के लिए, तो वहाँ हमारी बस जाया करेगी। बस को हमने इस तरह डिज़ाइन करवाया हुआ है कि बस के अंदर एक स्कूल है, 50 बच्चा बस के अंदर बैठ के पढ़ सकता है। तो इस तरह से हमने बनाया हुआ है, ये फिर मूव किया करेगी बस, कभी उस यूनिट पे, कभी उस यूनिट पे, तो हम टाइम के हिसाब से उसको मैनेज करेंगे।
1: इसमें कोई मल्टीमीडिया फैसिलिटीज भी होंगी बस में?
2: जी जी, एलईडी होगी, वाइट बोर्ड होंगे, टीचर्स होंगे, और डुअल फैसिलिटी है इसमें कि अंदर भी बच्चा बैठ के पढ़ सकते हैं और वही सिस्टम हम बाहर भी उसको लगा सकते हैं, बच्चे को बस के साथ बिठा के, सफ़े बिछा के, या जो भी उधर हमारे पास होगी सर्विस वो हम उसको यूज़ करके बच्चे को बाहर बिठा के पढ़ा सकते हैं।
1: ग्रेट जी, बहुत अच्छा आइडिया जी, नो डाउट, और ये डेफिनेटली बड़ी कलरफुल से बुक बस होगी ताकि बच्चों को अटेंड कर सके।
2: बिल्कुल सर,
1: दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर आप कैसे लेके चल रहे हैं अभी इनिशियली, क्योंकि स्टार्ट ही है जस्ट अभी, तो आप किस तरह से इसको रन कर रहे हैं, प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ट्यूटर्स को इंगेज करते हैं जो पढ़ाने के लिए आते हैं स्टूडेंट्स, वो भी यूसीबी के स्टूडेंट्स ही हैं, तो वो किस तरह इंगेज होते हैं और किस तरह वो मोटिवेट होते हैं चीज़ पर कि वो डेली जाकर पढ़ाएं? क्या डेली एक ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो रिपीटेडली जाता है पढ़ाने के लिए, या मुख्तलिफ बच्चे भी होते हैं?
2: असल में सर, हमने यूसीपी के स्टूडेंट्स को भी देखना होता है इनकी अवेलेबिलिटी, ये भी दूर दूर से आते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि हमारी नोबल काज भी पूरी हो जाए और इनकी स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो। तो हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, जिस बच्चे की उस टाइम पे क्लास नहीं होती उस बच्चे को हम उधर भेज देते हैं, वो उधर जाके पढ़ाता है। इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में 100 बच्चा है इस इब्तिदा स्कूल में, तो हमने 10 सेक्शन बनाए हुए हैं क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और स्लम कम्युनिटी के हैं, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो हमने सेक्शन बनाए हुए हैं, हर सेक्शन में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे को हमने एक टीचर दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर हमने इस तरह रखा हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे 9 से 12 क्लासेज होती हैं, रोज़ 10 टीचर जाता है पढ़ाने उनको, 10 टीचर उनको पढ़ाने जाते हैं और उनको हम बदले में सर्टिफिकेट यूसीपी की VIS देते हैं, ताकि उनका भी हर्ज ना, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है टाइम, वो भी ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ہم کچھ اکاموڈیٹ
1: کچھ نہ کچھ ان کو ریوارڈ بھی ملے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن کا باعث بنے.
2: بالکل
1: گریٹ جی. ہم مزید اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ ابتدا کیونکہ ایجوکیشن فار آل ہے, سلوگن تو یہی ہے نا ہمارا ایجوکیشن فار آل.
2: بالکل.
1: تو وائی اونلی دا اسٹریٹ چلڈرن, وائی ناٹ دا ایڈلٹس جو نہیں پڑھ پائے؟ تو اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس وقت ٹائم ہوا ایک شارٹ میوزک بریک کا. سنتے رہیے FM 92.6 UCB کی دنیا.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और आपका अपना प्रोग्राम जुगनू। आज हम बात कर रहे हैं जनाब तौकीर नाजिक साहब से, जो कि प्रेसिडेंट हैं इब्तिदा सोसाइटी के और UCP के इब्तिदा प्रोजेक्ट को भी लीड कर रहे हैं। तौकीर, बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि इस प्रोजेक्ट को हम क्या सिर्फ यंग बच्चों तक ही रखेंगे या इसे हम बालगान तक भी लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है लिटरेसी का रेट इतना अच्छा नहीं है और बहुत से ऐसे बालग अफराद भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो क्या हम उस तरफ भी मूव करेंगे?
2: बिल्कुल सर, जो इब्तिदा UCP का मकसद है, जो हमारा मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल, तो जाहिर है वो सब के लिए एजुकेशन फॉर ऑल, बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी हमने सोचा हुआ है। तालीम बालगां उस पर हमारा काम भी हो रहा है, हम एक दो फाउंडेशन से भी मिले हैं इस रिलेटेड कि हमें उसका सिलेबस क्या होता है, किस तरह से डील करते हैं उनका स्टाफ, क्योंकि वो जाहिर है बड़े हैं, बड़ों को डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कम्युनिटी भी ऐसी है, हर्डल्स भी आती हैं, उन सब पैरामीटर्स को देख के हमने उस पर काम करना है और उस पर काम हो भी रहा है। शायद 2-3 माह तक हम तालीम बालगा की तरफ जाएँ, फोकस करें उस पर, ताकि हम छोटों के साथ साथ बड़ों को भी तालीम दें, क्योंकि तालीम तो हर किसी का हक है।
1: हाँ, लेकिन इसमें आपको एक हर्डल जो सामने मुझे नज़र आ रहा है वो आएगी, वो ये है क्योंकि बड़े तो मेनली मेन अर्निंग सोर्स होते हैं ना घर का, तो वो उनको टाइम निकालना अपने अर्निंग वाले टाइम में से वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो फिर भी चलें आसानी से हो गया, तो बड़े जो लोग हैं उनके लिए आप फिर कैसे मैनेज करेंगे, थोड़ा सा ये मुश्किल नहीं हो जाएगा?
2: बिल्कुल सर, हम यही फार्मूला अपनाएंगे जो हमने छोटों के लिए अपनाया है स्लम कम्युनिटी में, क्योंकि ये भी घर का बड़ा ही है, उनके लिए रोजी रोटी कमाता है, तो हम उनको देख के ये सारा कुछ के वो कब अवेलेबल हैं, उनके पास टाइम क्या है, क्योंकि हमारा मकसद है एजुकेशन देना, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है, तो हमारा हक है कि हम अगले को ये चीज़ पहुंचाएं, तो हम उसी से पूछेंगे कि आप किस टाइम अवेलेबल हो, हम उसके मुताबिक स्लॉट रख लिया करेंगे और बड़ों को बुला के हमारा स्टाफ उनको लेक्चर दे आया करेगा।
1: दैट्स ग्रेट जी, बड़ी खुशी होती है आप जैसे मोटिवेटेड लोगों से मिलकर, और स्पेशली यूथ में अगर ये जज्बा वायरल हो जाए, जैसे कि आजकल वीडियोस वायरल होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जज्बा वायरल हो यूथ के अंदर। हम चाहेंगे कि आप अपनी जैसे बाकी यूथ को कोई पैगाम दें जिसमें वो भी कुछ फील करें कि उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, जैसे कि हमारा VS प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम UCP के स्टूडेंट्स को ये बता सकें, अपनी यूथ को बता सकें कि सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मुल्क की तरक्की में, तो आप अपनी ऐसे यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल सर, मैं अपने दोस्तों को, यूथ को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने अगर हमें भेजा है ज़मीन पर, हमें सारी नेमतें दी हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हम अपनी नेमतों में से या हमारे पास जो सहूलियात हैं उनमें हम दूसरों को भी शामिल करें, ताकि वो भी किसी नेमत से, किसी भी चीज़ से महरूम न रहें। तो मेरी ये दुआ भी है इब्तिदा UCP की, उनके लिए अपील भी है कि वो आएँ। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते, तो हमारा मेन मकसद है पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है उनको हम हल करें, बेसिक नीड्स उनको प्रोवाइड करें। तो इब्तिदा UCP एक बार फिर उनको दावत देती है, सिर्फ यूथ को नहीं, सारी जितनी भी कम्युनिटी है जो अल्हम्दुलिल्लाह खा पी सकती है 3 टाइम का खाना, उनके पास सारी नेमतें हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो नेमतों में से उसको भी शामिल करें जो इन चीज़ों से महरूम है। हम ये चाहते हैं, हमारा ये मकसद है, UCP का ये मकसद है कि पाकिस्तान में कोई बंदा किसी नेमत से महरूम न रहे।
1: दैट्स ग्रेट जी, और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ, जो हमें अपनी आवाम को समझाने की ज़रूरत है, वो ये है कि तालीम सिर्फ रोज़गार के लिए ज़रूरी नहीं है, तालीम अपने ख़ुद के बारे में आगाही के लिए भी ज़रूरी है, अपने शऊर को बेदार करने के लिए भी ज़रूरी है। सो तालीम का मकसद सिर्फ आपकी आमदनी में हिस्सा डालना नहीं होता या आपकी आमदनी के ज़राए बेहतर करना नहीं होता, बल्कि तालीम का मकसद आपको शऊर देना होता है, जिसके तहत फिर आप दूसरों के साथ मिलकर मिलजुल कर रहते हैं, अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करते हैं, अपनी भलाई के लिए काम करते हैं, अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर करते हैं। तो तालीम का मकसद बहुत बड़ा है उससे जो हमने समझ लिया हुआ है। कोई भी आप किसी से बात करें कि क्यों पढ़ना चाहते हो, तो वो कहेगा बड़ा होकर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। تو بڑا آدمی بننے سے بہتر میں سمجھتا ہوں بڑا انسان بننا ہے, اور ایجوکیشن یا تعلیم ہی ہے جو انسان کو انسان اور اچھا انسان بناتی ہے. تو تھینک یو سو مچ جی آپ کی ایفرٹس کا اور آپ کے اسپیشلی تشریف لانے کا, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام اجازت چاہیں گے آج کے پروگرام سے, اور منگل کے روز حاضر ہوں گے آپ کے پاس 3:00 PM. اللہ حافظ.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे HOD केमिस्ट्री और साथ लेक्चरर जो हैं मैम अनम से। अब मैं दोबारा मैडम सुमेरा की तरफ बढ़ूंगा और उनसे जानना चाहूंगा, मैडम जदीद दौर में बहुत मैटर करता है कि MOU और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, क्या इसके बारे में आप इजहार राय करना चाहेंगी?
2: थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन सर। एक्चुअली सेंसिटिव भी है और बढ़िया, जो स्टूडेंट्स आजकल के दौर के समझ फहम रखते हैं वो जब एडमिशन लेते हैं तो वो ये चीज़ बड़ी गौर फिक्र के बाद कि इस डिपार्टमेंट या इस यूनिवर्सिटी में हमसे पहले स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट और फैकल्टी क्या कर रही है। तो उसमें मैं बताती चलूँ, हमारे पास जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम लोग रेगुलरली विद इन द यूनिवर्सिटी एंड आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स दे आर अटेंडिंग द वेबिनार्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज दैट आर नेशनल एंड इंटरनेशनल इनसाइड द पाकिस्तान एज वेल एज अब्रॉड विजिट पे भी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज पे, फंडेड कॉन्फ्रेंसेज पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी और अपने स्टूडेंट्स का काम प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स, कुछ फैकल्टी मेंबर हमारे UCP के डिपार्टमेंट के एज अ फैकल्टी विजिटिंग फैकल्टी मेंबर सर्व कर रहे हैं इंटरनेशनली। अलॉन्ग विद दैट हमारे डिफरेंट MOUs हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बानिया USA में, यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा UAE में है। देन हमारी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल विजिट्स जिसमें इंडस्ट्रियल कोलेबोरेशन में बिन रशीद के साथ है, जिना हॉस्पिटल्स के साथ हैं, नोवा वेड फार्मास्यूटिकल्स हैं, दिलावर हुसैन फाउंडेशन है, एंड अलॉन्ग विद दैट पाक एंग्रो इंजीनियरिंग, शफी रेजो एंड TTI लैब्स हैं। और इन MOUs का हमें 3-4 तरह पे बहुत फ़ायदा है। एक तो हमारे स्टूडेंट्स जब उन्हें BS डिग्री में 6-7 सेमेस्टर में इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं तो समटाइम फ्री ऑफ कॉस्ट 2-3 मंथ्स, एंड समटाइम उन स्टूडेंट की कैपेसिटी को देखते हुए दे पे बी टू आर स्टूडेंट। अलॉन्ग विद दैट आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ देयर डिग्रीज उनको वही इंडस्ट्रीज उनके पिछले अपने पास एक्सपीरियंस के बेस पे जॉब्स ऑफर करती हैं। और न सिर्फ ये बल्कि हमारे MS PhD प्रोग्राम्स के लिए रिसर्च फैसिलिटीज़ जो हमारे पास ना हो इन इंडस्ट्रीज़ में हैं, हम अब इन्हीं कोलेब्रेशन के बेसिस पर हम वहाँ से अपनी रिसर्च फैसिलिटीज़ भी समटाइम अपनी पूरी कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में फैकल्टी इंडस्ट्री प्लेसमेंट, हर साल 1-2 फैकल्टी मेम्बर्स फॉर अ वीक आर टू यूनिवर्सिटी हमें ड्यूटी लीव देती है और जाके इंडस्ट्री में कोई ना कोई उनका प्रॉब्लम ओरिएंटेड इशू जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समटाइम इंडस्ट्रियल विजिट्स और जो कि ड्यूरिंग द सेमेस्टर विद द स्टूडेंट्स एज वेल एज विद द फैकल्टी मेंबर्स दे आर गोइंग टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू सी देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट कैन दे ऑफर अस फॉर आवर रिसर्च स्टूडेंट्स आर BS स्टूडेंट्स।
1: जी हां, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया, बहुत मशकूर हैं, इतनी वजाहत से आपने बयान किया अपने डिपार्टमेंट के बारे में। अब मिसन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जो लैब्स हैं उनके बारे में हमारे सुनने वालों को कुछ बताइए।
3: सर थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग अ गुड इनसाइट टू द डिपार्टमेंट। सर द लैब्स दैट वी हैव बेसिकली एज डॉक्टर सुमेरा ज़ेब हैज़ ऑलरेडी मेंशन्ड, वी आर कैटरिंग बोथ द बायोकेमिस्ट्री एंड द केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स। सो वी हैव टॉप नॉच up to date the most facilitated labs over here in the department in the University of Central Punjab, both regarding the chemistry and the biochemistry sections over here. So basically the instrumentation that we have include all of the basic equipment that is required for the students to perform their lab activities in the chemistry department. Other than that, when we talk about most advanced instruments or the elevated instruments, we have multiple instrumentations. For example, for the characterization, we have an instrument HPLC available over here. Other than that, we have multiple spectrophotometers. We have multiple apparatuses that is used for the reduction of different type of extraction of different chemicals. Other than that, if we are not doing anything over here, that is, the students are not able to cater over here, we have multiple collaborations with our international universities, with the national universities in Pakistan as well. Our faculty members are working hand in hand with the faculty, both at the national level and the international level. So the students, their needs in the terms of research, in the terms of when they're doing their thesis, when they're doing their lab experimentation, their needs are catered very carefully, either inside the premises of the department and outside of the department as well. And all of the students who have done their research do their research in the time frame that has been given to them. So as far as the lab of the department is concerned, we are providing the top-notch facilities to the BS graduates and the MS PhDs as well.
1: Ma'am, aap kuch mazid kehna chahengi is pe?
2: सर बस यही इसकी एग्जांपल दूंगी कि सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह और ये जो हमारे 16 पीएचडीज हैं अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती तो हम इनको इन टाइम इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि कोविड की वजह से 6 to 7 years पे गए हैं लेकिन उनमें से मोस्टली वो हैं जिन्होंने देयर फोर्थ और फिफ्थ ईयर में पीएचडी कंप्लीट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह और ये सब कुछ इसीलिए है कि हमारे पास FOST एंड UCP में फैसिलिटीज सारी हैं और अगर कोई नहीं होती तो हम इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग बट हम अपनी जो हमारी कोलैबोरेशंस और इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं हम उसको बेस बनाकर उनसे इन कोलैबोरेशन उनसे वो करेक्टराइजेशन और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करा के अपने स्टूडेंट्स को टाइमली कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्रीज की तरफ ले जाते हैं
1: वेरी वेरी पॉइंट मैम इसी के साथ हम एक और ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं कहीं मत जाइएगा सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: सुर और ताल,
1: सुर और ताल,
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
1: और तकरार,
0: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6।
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।